स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की

0: ऑप्शनल है, 0% पे और नो क्रेडिट चेक, नो एज लिमिट। आसान से कोर्सेज करें, फुली ऑनलाइन, घर के कंफर्ट से, नो एज लिमिट, नो क्रेडिट चेक, असाइनमेंट्स हैं, एग्जामिनेशन नहीं है, 8 साल से आपको असिस्ट कर रहे हैं, फीस $500 है काम होने के बाद, शुरू में कुछ भी नहीं। तो कॉल करें, असेसमेंट कराएं, सिर्फ ये वीक रह गया, उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट्स बंद कर रही है। गवर्नमेंट की पॉलिसी है, हमारी घर की पॉलिसी नहीं है, आज है तो है, कल नहीं है तो नहीं है। तो कॉल करें, असेसमेंट कराएं, ऑफिस आए 218 एक्सपोर्ट बुलेवर्ड, लाइक हर एंटर डेरी पे है, कल भी आप आ सकते हैं। नंबर नोट कर लें, आपका बेनिफिट है इसमें, इसमें आपका फायदा है बहुत ज्यादा। तो लाइक आज भी लाइक कितने लोगों के, 8 बंदों की फंडिंग उनके खाते में गिरी है, आज टिम हॉर्टन्स से इतना संभाल लिया, ऐसे गेस्ट हमारे लिए जो क्लाइंट्स हमारे ब्लेसिंग्स देते हैं, और जो पहला कोर्स कर चुके हैं दूसरे कोर्स में एनरोल होने भी आए थे आज। तो नंबर नोट करें, 437-264-31-75, 437-264-31-75, 437-264-31-75। उन्हें तुम व्हाट्सएप टेक्स्ट कर सकते हो एंड कल आप हमें कॉल कर सकते हैं, 437-264-31-75, 437-264-31-75,
1: 437-264-31-75। नंबर एक बार फिर दे दो नाको सर।
0: नंबर जी 437-264-31-75। तो ये जो आपको मैंने बताया ग्रांट्स, जैसे हाफ पोर्शन ग्रांट्स है, सिर्फ इस वीक तक है, ये नहीं अब अगले हफ्ते आएंगे बोलेंगे आपने ऐसा कहा था, राइट। तो इसी वीक तक है, कॉल करें, फंडिंग लें, जिसका मेजर पोर्शन ग्रांट्स है, 437-264-31-75, 437-264-31-75,
1: 437-264-31-75। यूनी ग्लोबल एडवाइजरी के नाल तुसीं कॉल कर लो, जे तुसीं $30,000 तो लैके $1,00,000 तक दियां ग्रांट्स लैनियां चाहुंदे, ग्रांट्स का मतलब जिहड़ी तुसीं वापस नहीं करनियां। सो नाको सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नंबर एक बार होर दे दो जे देना चाहुंदे तां।
0: हांजी नंबर नहीं नोट कर लिया लोगों ने।
1: ठीक है जी, क्या बात है, सुचा 437-264-31-75, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, क्या बात है। सो 9956733337।

0: Du bist ein Job, Assas, du Assas, Hebises, Nandit, Hose, Bises, Bole, Sony Hall, Sassiakal.
1: मम्मी पापा दे वीजे ली सुपर वीजा इंश्योरेंस लेनी है ते पंटी बबली दा विजिटर वीजा भी लगवाना है मेरा ते खर्चा ही बड़ा हो जाना है शमी पठल होरा ने तोड़ा खर्चा छोटिया इंस्टॉलमेंटा च बदल देना है वधिया बेनिफिट वाली इंश्योरेंस पॉलिसी वाजिब कीमत ते लेके दिंदे ने शमी पठल सुपर वीजा ते विजिटर इंश्योरेंस दियां बेस्ट डील ले याद रखो इंश्योरेंस एडवाइजर शमी पठल जी दा नाम 416-917-7763 416-917-7763 Life insurance, visitor insurance, super visa insurance, critical illness, disability insurance, RESP, travel insurance, convert expensive mortgage insurance to term insurance.

0: 6'2" लंबे दारा सिंह जी ने अपने जीवन काल में करीब 500 मैच खेले, उसमें से एक भी मैच नहीं हारे।
1: इसी तरह तवा किचन का दारा सिंह पराठा भी हार नहीं मान रहा। चैंपियन इन पराठा मार्केट
2: जो कि मिल रहा है 2410 एट तवा किचन, 30 रैम्बलर ड्राइव, ब्रैम्पटन, कोस टू कैनेडी एंड स्टील्स, 9054512600, 9054526200।
3: कि तुसी भी इन्वेस्टमेंट दे इस दौर प्रॉपर्टी च इन्वेस्ट करना चाहते हो, कि तुसी भी प्रॉफिटेबल आउटकम ले प्रॉपर्टी लभ रहे हो, वेयर फेयर डी रियल्टी रिप्रेजेंट्स आउटस्टैंडिंग फार्म हाउस, 28 एकर लैंड विद 2 रोड फ्रंटेजेस, डबल कार गराज, ग्रीन हाउस एंड वर्कशॉप, 407-418 हाईवे तो सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी ते। फॉर बेस्ट इन्वेस्टमेंट कॉल द बेस्ट टीम, फेयर डी रियल्टी ब्रोकर ऑफ रैकेट हरदीप पंदेर एंड 905-671-2000।
4: यू आर लिसनिंग टू योर फेवरेट रेडियो शो, रेडियो आवाज, द वॉइस, जिंदाबाद जिंदाबाद। फॉर एडवर्टाइजिंग प्लीज कॉल 416-518-3200।
5: ਜੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੋ ਆਲ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਐਂਡ ਵਾਸ਼ ਲਿਮਿਟਿਡ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਵਾਸ਼, ਟਰੱਕ ਆਇਲ ਚੇਂਜ ਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਇੱਕ ਹੀ ਰੂਫ ਥੱਲੇ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਫਰਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਇਲ ਚੇਂਜ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਵਾਸ਼ ਸਿਰਫ $45, ਤੁਸੀਂ ਕੈਰ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਿਦ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਟ $850, ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਅਰ ਡਰਮ and rear brake change at $750, and AC recharge is at just $180. So reach out to them, call at 905-452-9955. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ 71 ਸਟੈਫਰਡ ਡਰਾਈਵ, ਬ੍ਰੈਮਟਨ। ਤੇ ਰਾਈਟ ਨਾਉ ਇਹ ਹਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੱਕ ਮਕੈਨਿਕ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਦੈਮ, ਦੇਅਰ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 905-452-9955।
0: 6'2" ਲੰਬੇ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਮੇ ਕਰੀਬ 500 ਮੈਚ ਖੇਲੇ, उसमें से एक भी मैच नहीं हारे।
1: इसी तरह तवा किचन का दारा सिंह पराठा भी हार नहीं मान रहा। चैंपियन इन पराठा मार्केट
2: जो कि मिल रहा है 2410 एट तवा किचन, 30 रैम्बलर ड्राइव, ब्रैम्पटन, कोस टू कैनेडी एंड स्टील्स, 9054512600, 905-451-2600।
6: हुण घर दे इलेक्ट्रॉनिक सामान दी सर्विस हो गई है बिल्कुल टेंशन फ्री। अप्लायंस टू फिक्स है थोड़ा भरोसे योग सर्विस पार्टनर। फ्रिज, अवन, चूल्हा, डिशवॉशर, वॉशिंग मशीन, जां ड्रायर, सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान दी सर्विस एक ही थां। तजुर्बेकार टेक्नीशियन, सर्विस सेल्फ कामदार वादा। अप्लायंस टू फिक्स हुणी कॉल करो हरविंदर, 6474071470, 6474071470। तुहाडे घर दा इलेक्ट्रॉनिक सामान हुण रहे हमेशा फिट।
7: यार लास्ट वीकेंड असी तवा किचन तो केटरिंग ऑर्डर कीता सी, ऑनेस्टली बेस्ट डिसीजन सी। हां ब्रो, फूड वाज अमेजिंग, फ्रेश, हॉट ते फुल टेस्ट वाला। गेस्ट्स भी पूरे इंप्रेस हो गए, सर्विस भी टॉप नॉच सी, टाइम ते डिलीवरी, प्रॉपर पैकिंग ते सब कुछ ऑर्गेनाइज, मेन्यू भी बहुत फ्लेक्सिबल सी, करीज, रोटी, राइस, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। ऑनेस्टली असी तां हुण हर फंक्शन लई तवा किचन ही चूज करांगे। Try Tawa Kitchen for the best catering in town. Fresh food, great service and unforgettable taste. Book your next event now. 50 Sunnyvale Gate, Brampton, 905-790-1699, 905-790-1699.
8: रियल एस्टेट दी दुनिया विच आओ, अपने सुपनिया नु सच कर विखाओ। फेयरडेल रियलिटी इंक ब्रोकरेज नाल हाथ मिलाओ।
9: रियल एस्टेट दी बारीकियां सीखो ते कंपनी वालों क्लाइंट्स लीड्स भी पाओ।
8: फेयरडेल रियलिटी इंक ब्रोकरेज नवे एजेंट हायर कर रहे ने।
9: आज ही कॉल करो फेयरडेल दे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड हरदीप पंदेर नु,
8: 905-671-2000।
9: फेयरडेल नाल हाथ मिलाओ, अपने सुपनिया नु सच कर विखाओ।
10: ਘਰ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫਰਨੀਚਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਸਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਸਟਮ ਸੋਫਾ, ਲੈਦਰ ਸੋਫਾ, ਸੋਫੇ, ਡਬਲ ਬੈਡ, ਮੈਟਰੈਸ ਤੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਰਨੀਚਰ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਰੇਟਾਂ ਤੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਹੀ ਪਹੁੰਚੋ ਕਾਸਾ ਫਰਨੀਚਰ, 120 ਡੈਲਟਾ ਪਾਰਕ ਬੁਲੇਵਾਰਡ, ਬ੍ਰੈਮਟਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ सोफा मार्ट, 24 रीगन रोड, ब्रैम्पटन। ज्यादा जानकारी ले कॉल करो परंजीत होरानु, 905-803-8056, 905-803-8056।
11: ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਏਜੰਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ CRA ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਜਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ CRA ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੀਗਲੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਾਰ ਮੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਾਲ DCAF
12: 905-908-2499 905-908-2499 ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ 411debt.ca। ਸਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਅਪਲਾਈ।
13: ऑटो ओनर्स, क्या आप ज्यादा इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं या फिर नया ड्राइवर ऐड करने के बाद आपका इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत बढ़ गया है? अगर आपके पास जी या G2 लाइसेंस है और कनाडा में 3 सालों का इंश्योरेंस एक्सपीरियंस है तो टेंशन मत लीजिए।
14: ऑल स्टेट इंश्योरेंस के दीक्षा गुलेरिया को आज ही कॉल करें, जो आपको अच्छा प्रीमियम, ऑनेस्ट एडवाइस और ग्रेट सर्विस भी देंगे। अपनी होम और ऑटो इंश्योरेंस का पैकेज बनवाएं और अप टू 30% तक बचाएं। ऑल स्टेट इंश्योरेंस के दीक्षा गुलेरिया 6476562810 6476562810।
15: ड्राइव कर रहे हो? शो नो एंजॉय कर रहे हो? कुछ बोल रहे हो?
16: ड्राइविंग लाइसेंस?
15: नो।
16: पुलिस ऑफिसर?
15: नो नो।
16: ट्रैफिक लाइट्स?
15: नो।
16: देन
17: डायमंड इंश्योरेंस दे पवन कौर गिल दा ए मैसेज। मोस्ट ऑफ इंटोरियंस इग्नोर कर रहे हैं अपनी ऑटो इंश्योरेंस रिन्यूअल या अपने रेट नो चेक कर ले। आज ही कॉल करो 30 तो वध कंपनीज नाल काम कर रहे पवन कौर गिल। 3 मिनट दे विच 300 तो लेके 1500 तक साल दी इंश्योरेंस कट सकती है ऑटो, होम और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज दी। 647-325-9900 647-325-9100 पवन कौर गिल फ्रॉम डायमंड इंश्योरेंस।
18: जिंदगी एक सफर है सुहाना।
19: महंगाई के इस दौर में मैं पूछता हूँ भाई बहनों, क्या आपको $10 फॉर टू कोई दे पाएगा कि नहीं? मैं आपसे पूछता हूँ, खाना चाहोगे कि नहीं?
20: क्यों नहीं खाना चाहेंगे? तवा किचन दे रहा है ना। अमृतसरी कुल्चा 2 for 10, बिरयानी 2 for 10, न्यूट्री कुल्चा 2 for 10।
21: अरे बस बस, फोन नंबर और एड्रेस तो दो।
2: तवा किचन @30 रैम्बलर ड्राइव, ब्रैम्पटन, क्लोज टू कैनेडी एंड स्टील्स, 905-455-2600, 905-451-2600।
21: इतना ही नहीं, ग्रैंड अपनी स्पेशल और भी आइटम है $10 फॉर टू।
22: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਾਂ PR ਹੋਲਡਰ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਜਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਖਿਆ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਨਾਮ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ 9592200 95-922-00 ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਓ।
23: ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਵਿਊਜ਼ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
24: ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਮਿਸਿਸ ਸਾਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੇਟਰਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਤਵਾ ਕਿਚਨ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ 50 ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬਨ 55-60 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਕਰਾਓ ਤਵਾ ਕਿਚਨ ਤੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।
22: ਤਵਾ ਕਿਚਨ 50 ਸਨੀਵੇਲ ਗੇਟ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਮਾਊਂਟਨੈਸ਼ ਐਂਡ ਬੁਵੇਡ ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.tawakitchen.ca 905-790-1699 905-790-1699 tawakitchen.ca। F-150 Ford ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਟਰੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। F-150 ਜਾਂ ਮਸਟੈਂਗ ਜਾਂ ਲਿੰਕਨ ਜਾਂ ਫੋਰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਨਿਲ ਚੋਪੜਾ, ਰੋਹਨ ਚੋਪੜਾ, ਚੋਪੜਾ ਬ੍ਰਦਰਸ, ਚੋਪੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। 42 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟੌਪ ਸੇਲ ਇਨ ਓਨਟਾਰੀਓ, ਕਾਰ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਦਾ ਨਾਮ, ਮਿਲਟਨ ਫੋਰਡ ਤੋਂ ਚੋਪੜਾ। ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਟਨ ਫੋਰਡ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 416-300-2941
25: यार, आजकल इकोनॉमी बहुत टफ चल रही है, ट्रकिंग इंडस्ट्री स्लो है, बिल्डर क्लोजिंग्स रुक रहे ने, ते कई बिजनेसेस लॉस विच जा रहे ने, जिथे सेविंग्स तक खत्म होने लग जांदी है। पर कनाडा विच फाइनेंशियल स्ट्रेस दे लई लीगल ऑप्शंस अवेलेबल ने थ्रू द इनसॉल्वेंसी प्रोसेस। तुहानू डेट नू प्रॉपरली असैस करन, मैनेज करन ते सिचुएशन अकॉर्डिंग रिलीफ ऑप्शन समझाण विच हेल्प करदे ने। इस प्रोसेस नाल तुसी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन नू कंट्रोल विच लिया सकदे हो ते अगला सही स्टेप प्लान कर सकदे हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन लई अज ही कॉल करो 416-518-3200 416-518-3200।
22: ਘਰ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਂਟਰਸ ਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੰਬਰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣੋਗੇ? ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ, 5-star ਹੋਟਲਸ, ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਕਸਟਮ ਕਾਰਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੇਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 7 ਸਾਲ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫ੍ਰੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਈ ਸੁਖਮਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 416-816-8401 416-816-8104-01
0: याद है मैनू जदों मेरा फर्स्ट एक्सीडेंट होया सी किन्नी परेशान हो गई सी मैं इंश्योरेंस नाल डील करना गड्डी पेंट कराना किन्ने झंझट थैंक्स करदी हां मैं स्पीडएक्स ऑटो कलिजन वालियां दा जिन्ना ने मेरी इंश्योरेंस नाल खुद डील किया रेंटल कार भी दिती ते मेरी कार नू बिल्कुल नवी वर्गी बना दिता ते तुसी भी पहुंचो स्पीडएक्स ऑटो कलिजन 181 रदरफोर्ड रोड साउथ यूनिट 11 ते या कॉल करो 416-277-9221 416-277-9221
1: रुपिंदर गरेवाल लॉ ऑफिस रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन विल बनाउन लई फैमिली लॉ जा फिर पावर ऑफ अटॉर्नी ऑल सर्विसेज अंडर वन रूफ कम्युनिटी दा जानिया पहचानिया नाम रुपिंदर गरेवाल बैरिस्टर सॉलिसिटर एंड नोटरी पब्लिक लोकेटेड एट चिंक्यूजी एंड बवेड फॉर ऑल सर्विसेज कॉल 905-497-1211
3: निर्बल
4: बाबे ने कहा कृपा हो जाओगी नींबू मिर्चा टंगो पर कृपा तो हो ही नहीं
5: ऑनलाइन भी मार्केटिंग करके देख ले पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया
6: मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता
26: रेडियो आवाज
27: रेडियो आवाज रोजाना सवेरे 9-10 बजे तक एवरी सैटरडे 10-1 बजे तक प्राइम टाइम ते वधेरे जानकारी लई तुसी कॉल कर सकते हो 416-518-3200

खूबसूरत मुल्क आज CHLO डिजिटल AM फ्रीक्वेंसी राय टोरंटो पेंसिलवेनिया न्यूयॉर्क वाशिंगटन न्यूजर्सी तक सन सुन रहे आप सबका हार्दिक स्वागत करते हाँ। उम्मीद दिन खुशगवार चढ़ती कला वाला निरभव निर्वैर रहेगा। मोहब्बत और प्यार चेहरे तो झलकता रहेगा, रोशनी रस्ते दिखावेगी, तुसी चलते रहोगे।

0: 8773 sofastudio.ca. Thank you, Jim.
1: रात हमें छड़ दिनी है पर जनाब चले किथे हो
2: मैं चले स्काईडम ऑटो एंड बॉडी सेंटर जेड़े कर देने मेरी कार दी केयर टेस्ट सर्विस ते फुल रिपेयर
1: ए होई हन स्काईडम ग्रुप ऑफ कंपनीज जेना दिया जीटीए दे विच चार लोकेशन ने मेरी फ्रेंड अनु दी एक्सीडेंटल कार भी फिक्स करके नवी बनाती सी
2: जी हां कारा दे नाल नाल बसा अते बड़े ट्रकां दी हर तरह दी रिपेयर अते बॉडी वर्क दा काम भी कीता जांदा है फ्रीट वास्ते बेस्ट पैकेज प्रोवाइड कीते जांदे ने बतेरी जानकारी लई कॉल करो 905-874-9878
3: बंबा गया मैं जिथे जावां मुंडे कहंदे बंबा गया
4: You're listening to Grimtas Radio on AM 530 from 10 to 11 a.m. Monday to Friday with Jazz Tagar, your favorite show.

0: ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਸਟ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਮੋਰਗੇਜ ਜਾਂ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਮੋੜੋ 1200 ਡੈਰੀ ਰੋਡ ਈਸਟ ਯੂਨਿਟ 22 ਮਿਸਿਸਾਗਾ 416-804-2015 416-804-2015
1: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
2: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव, ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
1: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
3: जी असीं आप दे नाल शेयर करांगे जी शैल गैस स्टेशन। ए शैल गैस स्टेशन च मल्टीपल इनकम जनरेटिंग ही गावे, एदे च टनल कार वाश ही गए, चार कॉइन कार वाश ही गए, एच कॉइन लॉन्ड्री की जे, एच तीन यूनिट ही गए जेडे रेंटल ने, थ्री बेडरूम अपार्टमेंट ही गया, टेक आउट रेस्टोरेंट ही गया, यू नेम इट। ब्यूटीफुल लोकेशन, 1.2 एकड़ लॉट ही है, क्वाथरा लेक से एरिया च ही गावे। ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੇ $750,000 ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਹੈਗਾਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ 6479884449। ਹਸੀਬ ਸ਼ੇਖ 6479884449। ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਜੀ।
4: You're listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000. Toronto's number one station, AM 530.
5: Punjabi Versa!

0: IPL चल रहा है only on Karo Stream. Watch successful IPL season only on Karo Stream. www.karostream.com or call 905-204-1313.
1: A to Z किचन कैबिनेट भाई वाह क्या किचन कैबिनेट तैयार कर रहे हैं लकी भाजी दी बनिया किचन कैबिनेट देख के गुआंढ भी बहाने नाल तुहाडे

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165।
1: भाई साहब जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं, इस करके हाथ दे विच इंश्योरेंस पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है।
2: ता इस लई आज ही हरप्रीत सैनी नो मिलो। इना कोल ने स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तुहानू सिर्फ 10 साल या 20 साल लई पे करन दी लोड है ते इन्ने नाल ही तुसी पूरी लाइफ कवर्ड हो। डिविडेंड दे नाल हर साल कैश वैल्यू ग्रो करदी है ते कवरेज इंक्रीज करदी है। वधेरी जानकारी लई कॉल हरप्रीत सैनी 416-817-6500 416-817-6500।
3: Kataria Tours and Travels located near 2883 Derry Road, East Rupert Airport and Derry, the intersection Rupert. To see cheap flight tickets, see Pal Devecho, Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar, the route options sono chahide ne. Jan to see visa services, the Pal Devecho, puri family vacation Rupert jaan di soch rahe ne, jithe tuhanu all inclusive vacation packages bhi milde ne. Pahunchna maji Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection Rupert. Call kar sakde ho 905-678-1200. 905-678-1200 Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection over.
4: Aaj khush to baat hoge ta.
5: Oh ta hona hi hai jadon tinno video da no freezing no buffering ala 4K ultra high quality IPTV box hove tain lagda banda hi hai.
4: Aaj mere paas building hai, property hai, bank balance hai, bangla hai, gaadi hai.
5: ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਜ਼, ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼, ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਰਲਡਸ ਬੈਸਟ ਤੇ ਹਾਈਐਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਆਈਪੀਟੀਵੀ ਬਾਕਸ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਕਿਆ ਚਾਹੀਦਾ?
6: ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪ?
5: ਓ ਭਾਜੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ 40 ਇਅਰਸ ਇਨ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ।
7: ਡਾਨ ਕੋ ਪਕੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।
5: ਪਰ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ। ਐਬਨੀਜ਼ਰ ਐਂਡ ਗੋਰ ਰੋਡ 905-204-1313 ਜਾਂ ਢਿੱਲੋਂਵੀਡੀਓ.com। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ?
8: Nobel Fresh Foods ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਟਾਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਲੋ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਫ੍ਰੈਸ਼ ਫੂਡ ਫੇਰ ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਚਾਵਲ, ਨਾਲੇ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਸਭ ਮਿਲੇਗਾ ਨੋਬਲ ਫ੍ਰੈਸ਼ ਫੂਡ 2945 ਸੈਂਡਰਵੁੱਡ ਪਾਰਕਵੇ ਈਸਟ, ਦੂਸਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 20 ਗਲਿੰਗਹਮ ਡਰਾਈਵ ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ। ਫੋਨ 289-801-0566 ਨੋਬਲ ਫ੍ਰੈਸ਼ ਫੂਡ।
9: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
10: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव, ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888, दैट्स 905-460-8888।
9: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
11: ओ पंजाबी बोले ना ते मैं इंग्लिश विच अड़दा सी, ओ मेरी लुक ते मरदी सी ते मैं ओदे लक ते मरदा सी। सत श्री अकाल जी, मैं हां थोड़ा अपना रोशन प्रिंस ते तुसी सुन रहे हो वतनों दूर रेडियो।

0: One-stop solution for all your mortgage needs. Bank declined. Mortgage for self-employed. Quick closing in 48 hours. Or commercial loan. Just don't worry. 647-512-7000. Mortgage broker Mukesh Chauhan from Mortgage Diligent. FSRA number 10252. Conditions apply.
1: Don't worry. Mukesh Chauhan hai.
2: नोबेल फ्रेश फूड शहर विच इको रौला पै गया टॉप क्वालिटी ते लो लो प्राइसा विच नोबेल फ्रेश फूड फेर नंबर ले गया आटा दाल चावल नाले सब्जी ते दूध क्यों सब मिलेगा नोबेल फ्रेश फूड 2945 सैंडलवुड पार्कवे ईस्ट दूसरी लोकेशन 20 ग्लिंगहम ड्राइव इन ब्रैम्पटन फोन 289-801-0566 नोबेल फ्रेश फूड

0: जी हाँ, चांदी के फैंसी सेट, चांदी की बैंगल्स और चांदी की पायल।
1: इतनी बस नहीं, जेंट्स ने चांदी के कड़े, चांदी की चेन, चांदी के ब्रेसलेट,
0: बर्तन और चांदी के किसी भी तरह का सामान लेने के लिए वन एंड ओनली सिल्वर हट।
1: फोर एंड अवनीजर द इंटरसेक्शन ते मुर्दबारे बाय प्लाजा दे बीच सिल्वर हट।
0: 6473393521
1: 6473395 4525 अवनीजर रोड ब्रैम्पटन
0: सिल्वर हट।
2: जिथे चलेगा चलूंगी नाल तेरे वे टिकटा दो ले ले।
3: लेनिया हो या चार, बिजनेस ले जाना होवे या फिर घूमन ले, इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट, हर तरह दे ट्रैवलिंग पर्पस ले कांटेक्ट करो। एयर टिकट्स, इंश्योरेंस, पासपोर्ट एंड वीजा सर्विस ओ भी रीजनेबल प्राइसेस ते। स्पेशल ट्रैवल पैकेजेस भी अवेलेबल ने। कटारिया टूर एंड ट्रैवल 2883 डेरी रोड ईस्ट मिसिसागा। कॉल 9056781200।
4: आखरी अपील साड़ी रद्द हो गई।
5: ओ भरावा, साड़ी भी अपील रद्द हो गई है।
6: मैं ता तुहानू पहले ही कहा सी, मम्मी डैडी दा इमिग्रेशन दा केस स्मार्ट इंटरनेशनल इमिग्रेशन वालियां तो करवाओ।
7: सुपर वीजा फॉर पेरेंट्स, विजिटर वीजा, पेरेंट्स परमानेंट केस, स्किल्ड वर्कर्स, स्टडी वीजा, स्पाउसल वीजा अते रिफ्यूजल केसां दे माहर, तुहाडे हर तरह दे वीजे दे सुपर स्पेशलिस्ट।
8: स्मार्ट इंटरनेशनल इमिग्रेशन 7900 फॉर इंटेरियो स्ट्रीट स्वीट 306 ब्रैम्पटन 9057958999।
9: मतलब शायद तुसी स्वीट महल नहीं गए।
10: नहीं मैं मर जा, उठे क्यों होने?
9: जीटीए दा सब तो स्वादला खाना उठे ही ता मिलता है। सही सुने भाई, जिन्ना सोना रेस्टोरेंट है उस तो भी ज्यादा स्वाद स्वीट महल दी हर एक डिश है। जलेबियां, पकौड़े, समोसे, टिक्कियां, व्याह होवे पार्टी या होण किट्टियां, स्वीट महल दी वेज या नॉन वेज आइटम्स ले डाइनिंग करो या केटरिंग करवाओ। इको नंबर कुमाओ 416-679-9999 और विजिट यूनिट 9680 रेक्सडेल बुलेवार्ड टॉमिको। स्वीट महल, ट्रेडिशन ऑफ टेस्ट।
11: सत श्री अकाल दोस्तों, मैं तुहाडा अपना होस्ट अते दोस्त जगजीत माहल। सारंग प्रोग्राम विच तुहाडा ते मेरा साथ होना रहेगा सही 3 बजे तक। अज दे प्रोग्राम विच गल्लां बातां होणगीआं, गीत संगीत होएगा। राजवीर बोपाराई जी भी पहुँच चुके ने स्टूडियो दे विच, ते स्वर्ण सिंह टैणा भी पंजाब दी धरती तों कुछ मिंटां दे विच खबरां लैके अपने रूबरू होणगे। पंजाब दे विच की वापर रहा हैगा, किद्दां दा मौसम आ, किद्दां दी पॉलिटिक्स चल रही अज कल, ते होर भी गल्लां बातां उहनां नाल होणगीआं, विचारां करांगे ते गीत संगीत होगा। इस प्रोग्राम दा आगाज़ करदे आ, इक नवां सोंग आएगा, नवां गीत आएगा आरनेद दा, ते आपां सुण देंगे। उस तों बाद दे विच प्रोग्राम नूं अगे वधाउणे आ।

कहानी है, आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

0: रेडियो प्रोग्राम देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो धुआं बार होया है ना रहूगा जे है ना वीकेंड तक जब तक शनिचरवार अपनी जी है ना बारिश आ गई कहते वैसे तो तद तक तो हार्ड ही है
1: फ्राइडे
0: नूं भी शाम थोड़ा जिहा जंगल अग उग लगी वो थले वैसे तो कोशिश कर रहे फायर वाले भजाउण पर फैलती बहुत जल्दी है अमनप्रीत
1: बिलकुल बिलकुल
0: ओ हैलीकाप्टर राही इसरा बंदा कई तरह के पदार्थ है ना पर कोशिश तो करते फायर वाले भी कंट्रोल करिए पर नहीं होंगे जंगल
1: बहुत ज्यादा फैल
0: गई नैचुरल मीह पएगा वो फिर थले काफ़ी फर्क पड़ेगा प्राइम देश प्रदेश थे लेने टिप अपना दस दिए हाफ टाइम हो गया भाई सिफर सिफर खिडारी
2: हाँ जी सिद्धू जी बिलकुल सिद्धू जी जिदा की अपना लाइफ इंश्योरेंस की क्रिटिकल इलनेस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस की गल करते हैं मोर्गेज इंश्योरेंस की गल करते हैं अक्सर जो भी इंश्योरेंस की गल करते हैं हर एक पर्सन के माइंड आता है कि शायद जिन्हों के कोई पॉलिसी नहीं हैगी उन्होंने ही जरूरत हैगी इन्ह टिप्स की इन्हों इनफॉरमेशन के बारे पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जिन्हों की पॉलिसीज ऑलरेडी चल रही ने चाहे थोड़े टर्म इंश्योरेंस है चाहे होल लाइफ है चाहे पेड अप पॉलिसीज ने जरूर टाइम बाय टाइम रिव्यू जरूर किया करो क्योंकि जो पेड अप पे पॉलिसी हैगी है कई बार सानू लगता है पॉलिसी का पेमेंट ही बंद हो गई है हम कवरेज चल रही है साड़ी उम्र हूँ ये रिव्यू करने की कोई जरूरत ही नहीं पर ऑब्वियसली है जो कल किसी तरह की बेनीफिशरी के कोई चेंजेस करनी है कॉन्टिजेंट बेनीफिशरी या कोई ट्रस्टी रखा से बच्चों के लिए या फिर तुम कोई एड्रैस के चेंजेस करनी है ऑब्वियसली जो उसको रिव्यू करोगे तो यह सारिया चीजों अपडेट कर सकोगे अदरवाइज की हैगा कि जिन्हों बेनीफिशरी अज तो 20 साल पहला 25 साल पहला रखा से जे तुम उन कोई भी चेंजेस करनी चाहोगे तो वह उस तरीके होएंगी चेंजेस जे आप उसको रिव्यू किया जे अपने माइंड आऊगी ये चीज इस तरीके दे नाल काफी बार मैं देख रही हूँ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही होंदिया ने पर सानू लगता है कि 10 साल बाद 20 साल बाद पॉलिसी ने खत्म हो जाना है पर जिहड़ी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज होंदी उन्होंने भी यही ऑप्शन होंगी है प्रिविलेज होंदा हैगा कि तुम उसको कदम भी मनी बैक पॉलिसी के होल लाइफ पॉलिसी के कन्वर्ट कर सकते हो काफी बार जो असं 50s 60s के पहुंच जाने 65 प्लस हैगी एज तो उस टाइम से तुहाडे कोल ऑप्शन होंगी है कि तुहानू जे इस टाइम से फाइनल एक्सपेंस कवरेज की जरूरत है फ्यूनरल कॉस्ट एक्सपेंस कवरेज चाहिए हैगी है डेफिनेटली नवी पॉलिसी करवाने तो मेडिकल क्वेश्चन भी आओगे मेडिकल हिस्ट्री भी चैक की जाती है पर जे थोड़े को ऑलरेडी टर्म इंश्योरेंस चल रही है उस पॉलिसी असी होल लाइफ पॉलिसी के चाहे एस्टेट प्लानिंग के लिए जरूरत हो चाहे फाइनल एक्सपेंस कवरेज की जरूरत हो फ्यूनरल कॉस्ट एक्सपेंस कवर करने सो वो सारिया चीजा पॉलिसी के नाल मोडिफाई करके आप कवर अप कर सकते होंगे सो मैं जरूर कहूंगी अपने लिसनर्स थोड़ा भी इस तरीके का कोई भी कंसर्न है कोई पॉलिसी रिव्यू करना चाहते हो या कोई भी माइंड के क्वेश्चन है इंश्योरेंस रिलेटिड या इनवेस्टमेंट थोड़िया कोई भी TFSA FHSA RRSP या बच्चों की RESP रिलेटिड कोई कंसर्न है या किसी भी वह इनवेस्टमेंट किसी इंस्टीट्यूशन के चल रही है उन्होंने रिव्यू करना चाहते हो कि ग्रोथ हैगी है कि रिटर्न आ रही है सो वह सारे डिस्कशन के लिए जरूर तुम मैं कॉन्टैक्ट कर सकते हो जी मोना मेंगी @416509-1509 या फिर इंश्योरेंस फौजी के ऑफिस आ सकते हो 9280 गोरवे ड्राइव यूनिट C110 इन ब्रैम्पटन या कॉल की जा सकती है जी 416509-1509 थैंक यू सो मच टाइम देने लिए
0: मेहरबानी जी और श्रोतो तुसी ना ग्रोसरी करनी है तो अज तो इंडियन फ्रूट लैंड की ब्रांच जी हैगी 25 सेंटरबुर्ड पार्कवे हाईवे 10 कह लो हेयर इंटेरियो कह लो दे कॉर्नर से हैगी स्टारबक्स वाले प्लाजे के उत्तर बहुत बड़ी सेल लगी है तो तुसी सेल का फायदा उठा लो कुछ प्राइसा मैं होर बोलूँगा इन्हों दियाँ शेयर आटा 699 का हैगा और राइस लगाए ने इन्होंने 699 के 8 पाउंड इंडिया गेट राइस ने 10 पाउंड 999 के है तो नाल दी नाल जी बंसी वाइट शुगर ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ 999 ਦੀ 15 ਪਾਉਂਡ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਮਨਸੂਰੀ ਰਾਈਸ ਨੇ 20 ਪਾਉਂਡ 999 ਦੇ ਦਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ 2% ਜਾਂ 3.25 ਲੈ ਲਓ ਇਹ 499 ਦਾ ਕੇ ਜੀ ਹੈਗਾ 1.8 ਕੇ ਜੀ ਰਸ ਮਲਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 3 ਫਲੇਵਰ 'ਚ ਮਿਲੂਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ 699 ਦੀ
1: ਜੀ
0: 3 ਫਲੇਵਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਹੈਗਾ 1.8 ਕੇ ਜੀ 2299 ਦਾ ਟਾਟਾ ਚਾਹ ਪੱਤੀ 899 ਦੀ 1 ਕਿਲੋ ਗੋਲਡਨ ਟਾਟਾ ਚਾਹ ਪੱਤੀ 899 ਦੀ 1 ਕਿਲੋ ਹੋਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਸ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰੋ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਨੀ ਪਰੂਨ 25 ਸੈਂਡਬੋਰਡ ਪਾਰਕਵੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਥਾਲੀ ਲਗਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ
1: ਹਾਂਜੀ
0: 499 ਦੀ ਫੁੱਲੀ ਲੋਡਡ
1: ਹਾਂਜੀ
0: ਇਹ ਸੇਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੁਲਾਈ 26 ਤੱਕ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲਓ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛੋ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਬੋਲ ਦਾਂਗਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਜੁੜੇ ਹੋਇਆ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੈ ਲਈਏ
1: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ
0: ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਗਾਣੇ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬੜੇ ਘੱਟ ਲਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕੋਮਲ ਟਰੈਵਲ ਐਂਡ ਟੂਰਸ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਬੈਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸ਼ਿਪ ਕਰੂਜ਼ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਆਈਲੈਂਡ ਤੇ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੈਕੇਜ ਤਾਂ ਕੋਮਲ ਟਰੈਵਲ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਕੋਮਲ ਟਰੈਵਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 905-245-7711 ਕੋਮਲ ਟਰੈਵਲ ਐਂਡ ਟੂਰਸ
3: ਹੈਲੋ AM 530 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ
0: ਟੁਡੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 905-564-6444 ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ ਚਲੋ AM 530 ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੋਣ ਦਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੋਫਾ ਮਾਰ ਤੇ ਕੈਸਾ ਲੈਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਓਨਰ ਨੇ ਔਰ ਕਸਟਮ ਮੇਡ ਸੋਫੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੇਡ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਹੰਸਾ ਸੋਫਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਓ 4 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ 5 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ 11x11 10x10 ਦਾ ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ 120 ਡੈਲਟਾ ਪਾਰਕ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈਗਾ 24 ਰੀਗਨ ਰੋਡ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਫੋਨ ਦਾ 905-792-8053 905-792-8053 ਸੋਫਾ ਮਾਰਟ ਔਰ ਕੈਸਾ ਲੈਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ANJ ਆਟੋ ਰਿਪੇਅਰ ਬੋਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਹਰ ਮੇਕ ਤੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੇਫਟੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਅਮਿਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਨਿਊ ਤੇ ਯੂਜ ਟਾਇਰ ਪਵਾਓ ਰਸਟ ਪ੍ਰੂਫਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਓਇਲ ਚੇਂਜ ਬ੍ਰੇਕ ਜੋਬ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਇੰਜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਹਾਈਵੇ 50 ਤੇ ਮੇਫੀਲਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੰਬਰ 91 ਹੇਲੀ ਰੋਡ ਔਰ ਹੋਮ ਡਿਪੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 905-857-7596 905-857-7596 ANJ ਆਟੋ ਰਿਪੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੋਲਟਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨੇ
4: ਰੋਕੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਪੇਸ ਕੰਫਰਟ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਟੈਮਰਿਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੁਈਟਸ ਉਹ ਵੀ ਲੀਸ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਟੂਰ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 780-239-5845 780-239-5845
5: Another Don Clean with the Don Ducks.
6: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
7: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
6: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
7: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
6: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
7: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
6: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
5: Dawn Platinum, the better grease getter.
8: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: physical locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: कार वैन ट्रक दा कम होवे ता याद रखो रॉयल ऑटो सेंटर रिलायबल अफोर्डेबल अते ऑनेस्ट सर्विस जिथे कि मैं भी गड्डियां नु लेके जाना रिपेयर दे लई रॉयल ऑटो सेंटर टेस्ला दे व्हीकल्स ते भी कम करदे आ कोई भी रिपेयर किसी भी मेक एंड मॉडल सेफ्टी सर्टिफिकेशन ऊबर लिफ्ट दी सेफ्टी करवानी है स्पेशलाइज करदे ने इलेक्ट्रिकल अते कंप्यूटराइज्ड डायग्नोस्टिक कम च स्टील्स एंड मेलनी रॉयल ऑटो सेंटर एंड एमिशन टेस्टिंग 905-799-1478 905-799-1478 रॉयल ऑटो सेंटर
2: Get ready! GTA, are you ready?

नेक्स्ट फ्राइडे का दिन है, सो हफ्ता की कह लो रह चुके हैं, तो बहुत ही प्यारी बड़ी कमाल की शाम होगी। तो एक तो यार वेन्यू बड़ा प्यारा देखिया जाए तो मिसिसागा कन्वेंशन सेंटर बहुत ही हाई एंड बहुत ही प्यारा वेन्यू है। एंड मास्टर सलीम साहब जो फिर गाएंगे ना हम कुछ दिन तो उन्होंने गीतों के टाइटल थोड़े तक तुम्हें याद ही ने बट शेयर कर रहे हैं, तू बदली सौ वार दुख देनी नहीं किड़ा नवा दुख देना ही है। तो फिर कवालियाँ नुसरत साहब दियाँ तो बहुत सारे होर सूफी गीत सूफी कुछ एक जो ना चीज़ा सुनने को मिलती ने खास तौर पर एक ऐसे वेन्यू च ऐसे साउंड नाल तो बंदा कहता यार कि सलीम साहब गाई चलो तो असी सुनी जाने। तो एक गल भी है यार कि जोड़ा बंदा बह गया देखने लग गया थोड़ा उठन की थोड़ा पानी पीने जी नहीं करना। सो मास्टर सलीम रूह का सफ़र तो टिकटा लिए 647-783-9873 6477839873 6477839873। टिकटा की कोई भी जानकारी लिए मिलना tickets.com मिलना tickets.com के उत्ते जरूर जरूर जरूर जाके टिकटा लो। सिर्फ $49 तो टिकटा ने, $49 के विच थोड़े सॉफ्ट ड्रिंक्स जिन्हें भी ने सारे दे सारे फ्री ने। सो मिलना tickets.com ते तुसीं जरूर जरूर जरूर विजिट करो ते होर तुसीं टिकटा की जानकारी लै सकते हो। सो नंबर है अपना 905-673-3337-905-673-3337 के उत्ते गलबात थोड़ी साड़ी हो रही है। बहुत सारिया चीज़ा अज एक तो बंद भी हुई हैं तो बहुत सारे क्लोजर्स भी जी टी ए के आस पास किए गए अज दे मौसम करके। सो तुसी भी अपना ख्याल रखो जिन्ना रख सकते हो। एक तो फैन फेस्ट है जिहड़ा अपना टोरंटो का, तो उहदे लई भी एक बड़ी वड्डी डिसीजन टोरंटो ने की क्योंकि वह तो फैन फेस्टिवल खास तौर पर जो सैमीफाइनल वर्गे मैच होंगे यार बंद होने कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, बट मौसम ही ऐसा कि करिए। सो फीफा फैन फेस्टिवल भी अज कैंसल किया गया जो कि नेथन फिलिप स्क्वेयर के करवाया जा रहा सीगा। एंड उस कुछ एक कैंप्स कुछ एक प्रोग्राम्स ने वो भी अज कैंसल किए गए। कुछ एक सिटी के रन प्रोग्राम्स ने, एक तो फिटनेस इन द स्क्वेयर नाम का एक रन प्रोग्राम है उन्होंने भी कैंसल किया गया। सो हेल्थ रिस्क बड़े ने खास तौर पर, कोई बच्चे ने कोई बुजुर्ग ने कोई प्रैगनेंट है किसी हार्ट लंग कंडीशन ने, जस्ट स्टे इनडोरस से अपना ख्याल जरूर रखो। प्रोग्राम है पंजाबी रहा, नंबर अपना 905-673-3337। पी जेज रेनोवेशन, वाह देखो तुसी ना बेसमेंट तैयार करवानी है वाशरूम तैयार करवाना तो पी एन जे रेनोवेशन। देखो कोई शॉर्टकट नहीं, बस काम बड़ा सॉलिड तो काम बड़ा वधिया, आई नहीं भी पैसे बचाने दे मारे कोई शॉर्टकट्स वरत ले या कोई होंदा ना चीप जिहा काम कर ले। नहीं, फ्री एस्टिमेट रिलायबल तो प्रोफेसनल सर्विस है। जे तुसी किचन या बाथरूम रेनोवेट करवाना, बेसमेंट फिनिश करवानी है, नवी बेसमेंट रेडी करवानी है, फ्लोर या टाइल इंस्टॉल करने हैं, कोई फ्रेमिंग या ड्राइववॉल है, पेंटिंग फिनिशिंग है, फुल होम रेनोवेशन कोई एडिशन ने, कोई भी निके मोटे भी रिपेयर ने, कोई मेंटेनेंस है, तो पी एन जे रेनोवेशन कॉल तुसी जरूर जल्दी जल्दी कर लवो। 437-318-0400 437-318-0400 कॉल करो फटाफट 437-318-0400 फुली इंश्योर्ड WSIB इंश्योर्ड कंपनी है। तुसी इन्हां नूं जल्दी तो जल्दी कॉल करो, एस्टिमेट लो ते काम करवाओ। 437-318-0400 इन्हां नाल संपर्क किया जा सकता, जल्दी जल्दी कर लो फोन। सो सुनाइए थानू कुछ वधिया जिहा हुणे हुणे वीर ने, अच्छा हुणे बाई जी ने कहा कि नवी परमीश दा गाणा। देखो परमीश हुणे अजकल ना जे थानू शौक है सिंगिंग दा, थोड़ा लगता कि असं थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं तो कर लो। हम परमीश भी हसदा हों, देखो मुंडा बड़ा वधिया बड़ा टैलेंटड है, बड़ा परमीश हुणा ने बड़ी तरक्की की है वीडियो के खेत्र हमने गायकी दे विच भी, चलो जो मर्जी तुम कही चलो तो परमीश दे हुण जिहड़े गाने ने किन्ने यार चले ने। आम जे मुंडे एक रूबीकॉन ड्रिल सीगा, आ लै चक मैं आ गया, होर बड़े गाने चले तो करन नूं बंदा कुछ भी कर सकदा। अजकल कंप्यूटर या अजकल जो
ਸਿਸਟਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕੁਛ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਨੋ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾ।